0: वंदे मातरम।
1: मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य शा

एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की चौथी तिथि तदनुसार 26 अगस्त 2026। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन

0: क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसुआ फिलिप शोपेनिए के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मातृवंदना के साथ।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। लीजिए अब सुनिए जफर हुसैन वदायूनी के स्वर में ये कव्वाली।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। लीजिए अब सुनिए जगदीप सिंह की आवाज में ये भजन, रचना है रविंद्र पठानिया की।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण के तहत आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज सुबह 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। भूले बिसरे गीत सुनिएगा सुबह 6:40 पर। संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 6:55 पर। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह सुनिएगा 7 बजे से। कृषि संकेत सुनिएगा आज सुबह 7:05 पर। प्रादेशिक समाचार होंगे सुबह 7:10 पर। मनचाहे गीत सुनिएगा आज सुबह 7:20 पर। संगीत सरिता का समय होगा सुबह 7:45। आज सुबह 8 बजे से सुनिएगा समाचार।

और प्रभात। लोक संगीत सुनिएगा सुबह 8:15 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 8:45 पर। सुबह 9 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 बजे से। सुबह 10:05 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम स्वास्थ्य तन स्वास्थ्य जीवन। सुबह 10:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने का पुनः प्रसारण। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा सुबह 11 बजे से। सुबह 11:30 पर विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे। आज दोपहर 2:15 पर सुनिएगा दोपहर समाचार। दोपहर 2:30 पर विविध भारती सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। आज शाम 5:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम युववाणी। संगीत सरिता सुनिएगा शाम 5:30। आज शाम 6 बजे से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सदाबहार गीत सुनिएगा सुबह 6:30 पर। लोक रंग सुनिएगा सुबह 6:45 पर। हिंदी में समाचार होंगे शाम 7 बजे से। प्रादेशिक समाचार सुनिएगा आज शाम 7:10 पर। ग्राम सभा सुनिएगा आज शाम 7:20 पर।

रात्रि 8 बजे से सुनिएगा चित्रपट संगीत, रात्रि 8:20 पर सुनिएगा भेंट वार्ता, नेत्रदान महादान विशेषज्ञ मीनाक्षी शर्मा, समाचार संध्या सुनिएगा रात्रि 8:45 पर, मन चाहे गीत सुनिएगा आज रात्रि 9 बजे से रात्रि 9:30 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। आज रात्रि 11 बजे से होंगे हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, स्वर अनुराधा मराठे और श्रीकांत परगांवकर।

राजर्षि जनक की यज्ञशाला जहां सीता जी का स्वयंवर आयोजित है। सभी राजे महाराजे अपनी सुंदरतम वेशभूषा धारण किए बैठे हैं। रंगभूमि में जनक सुता का प्रवेश होते ही देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा करती अप्सराएं गाने लगी। चकित चितवन से सीता जी ने श्री राम को देखा, किंतु गुरुजनों तथा उपस्थित

अतिथि समाज को देखकर वो सकुचा गईं। श्री राम की मोहिनी छवि हृदय में बसाकर वो लाज छुपाने हेतु सखियों को देखने लगी। श्री राम तथा सीता का युगल मनोहारी रूप देखकर उपस्थित जन समुदाय मन ही मन विधाता से प्रार्थना करने लगा कि वो महाराज जनक को प्रेरणा दें कि वो अपना प्राण त्याग कर सीता जी का विवाह श्री राम से करते हैं। वृद्धावली गाते हुए भाटों ने महाराज जनक के प्राण को वाणी दी। इस भरी सभा में शिव के कठोर धनुष को जो भी तोड़ेगा सीता जी उसी का वरण करेंगी। प्रण सुनकर उपस्थित राजा एक क्षण को ललचाई दृष्टि से सीता जी का सुंदर रूप निहारते हैं, किंतु दूसरे क्षण उनकी दृष्टि मानो शिव जी के धनुष को तौलने लगती है। तमक कर वो धनुष को पकड़ते हैं, किंतु जब वो टस से मस नहीं होता तो लजाकर वापस चले जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत में सुनिए मन्ना डे की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है बूट पॉलिश। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट

हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घर की जवानी है। हुस्न भी फानी और इश्क भी फानी है, हंस के बिता ले दो घर की जवानी है। और जीने वाले होर भोले भले सोना।

लीजिए आप सुनिए गीता दत्त और मन्ना डे की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है देवदास, गीत लिखा है साहिर ने और संगीत दिया है एस डी वर्मन ने।

0: कारयितुं सुदृढ़ा आंतरिक सुरक्षा अत्यावश्यकी अस्ति। मंत्रिणा उक्तं यत् प्रशासनेन मादक द्रव्य संबद्धाः समस्याः नक्सलवादः अथ पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य च समाह्वानानि सफलतया निराकृतानि। एतासाम् उपलब्धीनां श्रेयः असौ राज्यारक्षिबलाय केन्द्रीयाभिकरणेभ्यः तथा केन्द्रीय सशस्त्रारक्षिबलेभ्यः प्रदत्तवान्। भारत चीन देशयोः मध्ये द्वैपाक्षिक सम्बन्धस्य निरन्तर विकासाय प्रगत्यै च भारत चीन सीमाक्षेत्रेषु शान्तिस्थापनस्य महत्त्वं भारतं प्रतिपादितवान्। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः फेजिंग नगरे चीन विदेश मन्त्रिणा वांग यी इत्यनेन सह भारत चीन सीमा प्रश्न विषयेषु विशेष प्रतिनिधीनां वार्तायाः पञ्चविंशतितमस्य चरणस्य सहाध्यक्षतां कृतवान्। विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् उभौ प्रतिनिधी तेषां समग्रं दीर्घकालिकं च हितं दृष्ट्वा सीम प्रश्ने राजनैतिक समाधानस्य प्रयत्नान् अनुवर्तयितुं सहमतौ अभवताम्। उभौ पक्षौ चतुर्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षस्य अक्टूबर मासे कजान नगरे गतवर्षे अगस्त मासे तियाचीन नगरे च स्वनेतृभिः प्राप्तानां महत्वपूर्ण सर्वसम्मतीनां कार्यान्वयने प्रगतिम् अभिलक्षितवन्तौ। उपभोक्तृकार्य विभागस्य सचिवा निधि खरे इत्येषा अकथयत् यत् कांदा एक्सप्रेस यानं दिल्लीनगरं प्रति प्रायः 800 मैट्रिक टन परिमितं पलाण्डुः आनयन् अस्ति। सामाजिकान्तरजालीये पटले सचिवा अवदत् यत् नाफेड NCCF तथा केन्द्रीय भण्डार केन्द्रेषु पलाण्डुः 35 रूप्यकाणि प्रति किलोग्राम मूल्येन विक्रियते। कांदा एक्सप्रेस यानम् आरम्भे चेन्नई एर्नाकुलम मदुरई गुवाहाटी इत्येतेषु स्थानेषु प्राप्स्यति इति सा संसूचितवती इति वार्ताः।
1: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। स्वीकार कीजिए ऋचा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, विचारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। विचारों के अनुसार ही हमारा जीवन बनता और बिगड़ता रहता है। चारों तरफ के वातावरण से प्रभावित होकर हम अच्छा या बुरा जैसा सोचते हैं, जीवन भी वैसा ही बन जाता है। हर परिस्थिति में अपने विचारों को सकारात्मक रखने से ही हमारा मनोबल बढ़ सकता है और हम बुरी से बुरी स्थिति में भी स्वयं को बाहर निकालने में सक्षम हो सकते हैं। हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायक होते हैं। जीवन में घटित किसी भी घटना से असंतुष्ट रहना या हर समय अपनी कमियों को खोजना, दूसरे की कमियों को खोजना, ऐसी नकारात्मक सोच हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों से ही बड़ा या छोटा बनता है। यदि हमारे विचार और सोच सही होंगे तो हम अपनी आलोचना को भी अपने जीवन के विकास का आधार बना सकेंगे, क्योंकि कई बार आलोचना के जरिए हम तक ऐसी चीज़ें पहुंचती हैं जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायक होती हैं। लेकिन गलत सोच से हम अपनी प्रशंसा को भी परेशानी का कारण बना सकते हैं, क्योंकि कई बार प्रशंसा मिलने पर हम अति उत्साहित हो जाते हैं। अपने विचारों और सोच को हमें हमेशा सकारात्मक रखने से हम समस्या या उलझन का समाधान भी आसानी से खोज सकेंगे। इसलिए हमें अपने विचारों को व्यापक बनाना होगा ताकि हर परिस्थिति में संतुलन बना सकें। हर दिन के बाद अंधेरी रात होती है और रात का अंधेरा कुछ समय बाद दिन के उजाले में बदल जाता है और यही प्रकृति का नियम है। कोई भी परिस्थिति हमेशा स्थायी नहीं हो सकती।

0: ऐसे में हमें अपने विचारों को स्थिर रखना होगा, तभी हम समझ सकते हैं कि नकारात्मक विचार हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। कार्यक्रम सुबह सुबह में बस इतना ही। लीजिए अब सुनिए संदेश।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: हेलो माँ। माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
3: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर न्यूज ऑन AIR।
2: न्यूज ऑन AIR?
3: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
2: अरे वाह माँ, कमाल है।
4: AIR। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक बार फिर आपका स्वागत है। FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि संकेत। विषय है सोयाबीन में रोग कीट नियंत्रण, विशेषज्ञ हैं विपिन जैन।
6: किसान भाई, जो इल्लियों की समस्या है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है अभी तक आपने कितने छिड़काव कर दिए हैं, ठीक है, और इससे पहले कौन सी दवा का छिड़काव किया है। क्या होता है कि जो दवा आपने पहले डाली हुई है उसको आप दोबारा ना डालें। यदि आप दोबारा डालेंगे तो उसका प्रभाव कम होगा। जो दवा रहती है उसको बदल बदल के डालना चाहिए। अब जो वर्तमान समय चल रहा है सोयाबीन की फसल लगभग तो इस समय अधिकतर फसलों में सोयाबीन की फली आने लगी है और हल्का हतला दाना बनने लगा है। तो किसान भाई ध्यान रखें, दवाई भी अपन को उस मात्रा में डालना है जिससे अपन यदि दवाई में 2 रुपये खर्च कर रहे हैं तो उससे 4 रुपये का फायदा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि ना के बराबर इल्ली है खेत में, 1x1 मीटर में आप जब आप इल्ली देखेंगे तो कम से कम उसमें आपकी 5 इल्ली होना चाहिए, ठीक है। यदि उससे कम इल्ली है तो दवाई डालने की जरूरत नहीं है, ये आर्थिक क्षति स्तर तक नहीं पहुंची है, ठीक है। तो इस बात का पहले आप ध्यान दें। इसके बाद हरी इल्ली है, तंबाकू की इल्ली है, चने की इल्ली है, उसका आप निरीक्षण करके देखें कि आपकी फसल में कौन सी इल्ली लगी है, ठीक है। इसके बाद वर्तमान समय में आप यदि इल्ली बहुत ज़्यादा है तो सबसे अच्छा एमामेक्टिन बेंजोएट 5EC, इस दवा का आप छिड़काव करें। ये दवा का छिड़काव करने से आपकी फसल को है सुरक्षा प्रदान होगी। इसका असर लगभग 20-25-30 दिन तक रहता है। यदि 20 दिन तक इसका असर रहेगा तो निश्चित रूप से आपकी फसल आ जाएगी। लेकिन किसान भाई एक बात और विशेष रूप से ध्यान दें, दवा के चुनाव के बाद जो उसका छिड़काव है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपने दवा ले ली, बहुत अच्छी दवा ली, सब कुछ ली, पर्याप्त मात्रा में डाली जो डोज बताया है, लेकिन कैसे डाली ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जैसे 1 एकड़ में आपको दवा डालना है तो किसान भाई ने वाला कि हमें तो 100 ग्राम बताई गई थी, 100 ग्राम डाल दी, लेकिन 100 ग्राम दवा कैसे डाली, उनने 2 पंप में घोली और डाल दी। तो इस दवा का असर आपका कम होगा, आप

0: आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। उसके लिए किसान भाई ध्यान रखे, कम से कम एक एकड़ में 150 लीटर पानी में ये आपकी दवा घुलेगी और फिर उसका छिड़काव होगा। आप 150 लीटर पानी में दवा बनाएं, ठीक है, फिर वो जितने पंप हों, आपके 15 लीटर के हिसाब से 10 पंप होंगे, 25 लीटर का है तो कुछ कम पंप होंगे, उसका हवा के विपरीत दिशा में, मतलब हवा जिस तरफ चल रही है उस तरफ मुंह ना करके और आप छिड़काव करें, ठीक है, जिससे आपको जो परिणाम है बहुत अच्छे प्राप्त होंगे और लाभ भी अधिक प्राप्त होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संकेत, विषय था सोयाबीन में रोग कीट नियंत्रण, विशेषज्ञ थे बिपिन जैन। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाएं। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज मालनपुर में गोदरेज की चौथी विनिर्माण इकाई का करेंगे शुभारंभ और प्रदेश में भोपाल और उज्जैन सहित 5 संभाग के जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है।

0: मंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने 12 सड़क मार्गों के निर्माण के लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को नाबार्ड से 4,600 करोड़ रुपए के ऋण की शासकीय गारंटी देने का निर्णय लिया। ये भी निर्णय लिया गया है कि 22 चयनित राजमार्गों, जिला और ग्रामीण मार्गों का स्वामित्व मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को हस्तांतरित किया जाएगा। बैठक में सिवनी बालाघाट के 91.64 किलोमीटर मार्ग को 3,960 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने गरीब और कमजोर वर्गों से जुड़ी 19 जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ 40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही उज्जैन के मध्य प्रदेश धनवंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 244 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा है कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों के संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल ग्वालियर जिले के डबरा तहसील प्रांगण में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत किसानों की सेवा और समृद्धि के लिए बलराम कृषि महोत्सव मनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर तेजी के साथ विकास की ओर अग्रसर है। ग्वालियर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का भी बड़ा हब बनने जा रहा है। डॉ. यादव ने ग्वालियर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला लाल टिपारा की भी सराहना की। श्री यादव ने कहा,
1: ग्वालियर की पावन धरती पर डबरा के अंदर बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को और बाकी आनंद के साथ त्योहार की पूर्व 2 दिन के पहले से जो माहौल बन रहा है, वास्तव में रक्षाबंधन में बहनों के साथ इमरती देवी, प्रियंका जी, सारी हमारी बहनें बैठी हुई है। अब तो 33% आरक्षण मिलने वाला, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। आपके कलेक्टर भी बहन है और सारे लोग यहाँ आने वाले समय की दृष्टि से ये सरकारों का पावर आप ही को मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से खासकर बलराम कृषि महोत्सव में आप सबको पुनः स्वागत करता हूँ। भगवान बलराम जी की जयंती 2 तारीख को है, लेकिन अब ये तो किसान कल्याण वर्ष पूरा वर्ष मना रहा है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड की चौथी विनिर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। 450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित इस इकाई से 2,250 रुपए से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नई इकाई में आधुनिक स्वचालित पैकेजिंग प्रणाली और 10 मीट्रिक टन प्रति घंटे क्षमता वाला सैपो निफिकेशन संयंत्र स्थापित किया गया है। विस्तार के बाद राज्य को प्रति वर्ष लगभग 185 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जीएसटी राजस्व मिलने का अनुमान है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में अन्य किसानों के बीच दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा,
3: तरफ बड़ी बड़ी चुनौतियां जिसमें

0: चेंज का खतरा है, पानी की कमी है, मिट्टी के। आप में से ही किसी ने कहा कि प्राकृतिक खेती कितनी आवश्यक है, आपके बीच में ही किसी ने कहा चार चार जिसकी जरूरत ही नहीं, मारे जा रहे हैं, कम हो रहा है, नई नई बीमारियां, नए कीट, खेती की लागत भी बढ़ रही है और बाजार भी तेज लगे हित हाथ। एक विषय पे और जाट साहब मैं सुझाव दे रहा हूं, विचार आप लोग।
1: हरियाणा के पंचकुला में हुए भारतीय एथलेटिक्स सीरीज के 14वें चरण में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में विक्रांत पांचाल ने 46.16 सेकंड के समय के साथ जीत दर्ज की। उन्होंने ओलंपियन मोहम्मद अजमल को पीछे छोड़ा जो 47.03 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। महिलाओं की हेमंत थ्रो में तान्या चौधरी ने 61.28 मीटर के प्रयास के साथ पहला स्थान हासिल किया। प्रदेश में मॉनसून अब उत्तरी पश्चिमी और मध्य हिस्से में एक्टिव रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन तक भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में तेज बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश में इस मॉनसूनी सीजन में औसत 25.5 इंच बारिश हो चुकी है जो कुल कोटे की 68% है। मौसम विभाग ने आज भिंड, दतिया और सागर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह, मैहर और सिवनी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में 1 सितंबर को स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक के क्षेत्र में आईआईटी दिल्ली के विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिंडौरी में अति वर्षा और बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए यात्री बसों के सुरक्षित संचालन के लिए जिला परिवहन अधिकारी द्वारा यात्री बस ऑपरेटर्स और संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दतिया में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अशोकनगर के कलेक्टर साकेत मालवीय कल ग्राम पलकाटोरी में औद्योगिक क्षेत्र विकास के संबंध में कहा कि जिला प्रशासन द्वारा उद्योग स्थापना के लिए उद्यमियों के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत झाबुआ जिले के पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए द्वारका सोमनाथ तीर्थयात्रा प्रस्तावित है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत में पहली फरमाइश हमें भेजी है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू और भाविका ने इसी गीत को पसंद किया है। ग्राम नागर कोहरा राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या ने इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान और जिवियम जैन ने इसी गीत को पसंद किया है। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल ने इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म दहक से ये गीत। आवाज़ है हरिहरन और साधना सरगम की। गीत लिखा है मजरूह ने, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम मन चाहे गीत में। अगली फरमाइश हमें भेजी है एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी ने। इसी गीत को पसंद किया है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा ने। साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विकास, चेतन रोशनी और प्रियांशी ने। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म इजाजत से ये गीत। आवाज़ है आशा भोसले की, गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगली फरमाइश हमें भेजी है दापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदूरकर ने। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जोहरी ने इसी गीत को पसंद किया है। लोरमी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज और ऋषभ ने इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव देशमुख, प्रशांत राजे, संचित प्रथमेश, प्रणाली सानवी और कल्पना ने इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है।

इमनाबाद जिंद हरियाणा से जसबीर अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और कमरजीत कौर ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म इतिहास से ये गीत। आवाज़ है अनुराधा पोटवाल और हरिहरन की। गीत लिखा है समीर ने, संगीत दिया है दिलीप सेन, समीर सेन ने।

अगली फरमाइश हमें भेजी है जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया ने। यवतमाल बिदर्व से संतोष खड़से और विनोद खड़से ने इसी गीत को पसंद किया है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्माला आरती गौरी ओम कुमार ने, भबरपुर से राधेश्याम देवांगन चंपा, राजू नेहा जगदीश गोविंदा और अक्षय कुमार देवांगन ने इसी गीत को पसंद किया है। वडिंग

पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म दूसरा आदमी से ये गीत। आवाज़ लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की, गीतकार है मजरूह, संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

इसी के साथ कार्यक्रम मन चाहेगी तब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। संगीत सरिता में सुनिए भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में एक गजल कलाम है कातिल राजस्थानी का। संगीत दिया है भूपेंद्र सिंह ने।

0: लीजिए, अब सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में ये गजल। लेकिन पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आप सुन रहे हैं अब जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में गजल। कलाम है निदा फाजली का।

इसी के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा

0: और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी, इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्य वर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल के को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में

0: इस सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान

0: तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 102.6 MHz पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। नीचे प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में सुनिए मानसिंह रैकवार के स्वर में वर्षा गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम लोक संगीत में। लीजिए अब सुनिए देवकीनंदन सकवार के स्वर में झूला गीत।

इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सुनिए फिल्म बिजली और तूफान से ये गीत, आवाज़ है मोहम्मद अजीज की, गीत लिखा है खालिद ने और संगीत दिया है अनवर उस्मान ने।

लीजिए अब सुनिए फिल्म तालसिया गीत, आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है गुरु। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। दिल तो बच्चा है जी, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। कुणाल गांजावाला की आवाज है, संजय छैल ने इसे लिखा है, प्रीतम का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। 26 अगस्त एक ऐसी महान महिला का जन्मदिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानियत की सेवा के नाम कर दिया। मदर टेरेसा, जिनका असली नाम था अग्नेस गोंझा बोयाजीजू, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। भारत आकर उन्होंने गरीबों, बीमारों, अनाथों और बेसहारा लोगों की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया था। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और मानवता के प्रति समर्पण के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए एक ऐसी महिला के रूप में जिन्होंने हमें यह सिखाया कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है किसी ज़रूरतमंद के काम आना। सुनते हैं ये गीत।

0: पुकार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे एआर रहमान का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अलका याग्निक और साथियों के स्वरों में इश्क विश्क फिल्म का गीत, समीर का लिखा, अनु मलिक का संगीत।

श्रोताओं, आज है जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हुए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज के फनकार आज का कार्यक्रम ये केंद्रित रहने वाला है फिल्मकार मधुर भंडारकर पर। 9:30 पर और रात्रि पुनः आप सुन पाएंगे 9:30 पर। आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की, तो सुनना नहीं भूलिएगा। और गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हीरोइन फिल्म से बैनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज़ें, नीलेश मिश्रा का लिखा गीत, सलीम सुलेमान का संगीत।

श्रोताओं, 26 अगस्त महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है 26 अगस्त के दिन। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि बराबरी के उस अधिकार को समझने का दिन है जिसकी लड़ाई महिलाओं ने वर्षों तक लड़ी। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को मतदान का संवैधानिक अधिकार मिला। लेकिन महिला समानता का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब है शिक्षा, रोजगार, समान अवसर, समान सम्मान, सुरक्षा और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आज़ादी। और भविष्य की बात करें तो असली समानता तब होगी जब किसी महिला को आगे बढ़ने के लिए अपने जेंडर की वजह से, लिंग की वजह से कोई अतिरिक्त बाधा ना झेलनी पड़े, क्योंकि बराबरी किसी एक दिन का उत्सव नहीं, हर दिन की सोच और व्यवहार का हिस्सा होनी चाहिए।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुश्छल की आवाज में। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है और हिमेश रेशमिया का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: खुशी से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर की शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहां भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर, आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना।

और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो काफी पिक्चर देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना। रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम भाग होती थी।

एक वीडियो कैसे लाइब्रेरी चलाता था। काफ़ी साल मुझे उसमें, एक 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया, वीडियो कैसे घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसे देता था, कई फिल्म वालों को भी कैसेट दिया करता था मैं। तो वहाँ से, तो पहले से फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसेट देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफ़ी करीब आ चुका था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा। तो काफ़ी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है, तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक, तो 5 साल का सफ़र उनके साथ जुड़ा रहा। तो काफ़ी कुछ सीखने मिला, वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है, तो बहुत उनसे सीखने मिला और वहाँ से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जब मैं बनाने निकला था तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि जो कमर्शियल फिल्म चलती है, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट और जिस तरह आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद नलानी टाइप सोचते हो, तुम आप कमर्शियल फिल्में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर रामगोपाल वर्मा जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए। तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए, अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की, जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रि शक्ति, जो पिक्चर थी जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुनाजी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर लगी तो किसी के स्टेटस वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुनाजी तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी, वो आई और चले गई, पता नहीं चला किसी को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले और खास करके जो पिक्चर जिसमें कोई स्टारकास्ट भी नहीं थे, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: अगली फिल्म चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक डेढ़ साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूँ, बोल के किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता नहीं लेडीज बियर बार है, तो वहाँ ले गया और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियाँ डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, तो वहाँ से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहाँ से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत तो लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुना है इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज़ किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे, तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसे टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में, तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार बालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफ़ी एक रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट की राइटरों के साथ बैठ कर उसको डाला, और उनको लगा कि पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती है अच्छी पिक्चर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर में बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सदाए कालापानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में, तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे, तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से, गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमज़ोर पड़ेगा, और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में

0: मेरा कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते तो कम पड़ता, हर लड़की के आइटम गाने भी डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक, तो मैंने उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर मैंने दिखाया कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया। तो हमने वो डिसीजन लिया, और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में।
1: ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें, सिर्फ यही नहीं बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। आपको भी अच्छी लगी थी ना ये फिल्म?

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी, अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल।

था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा भरा से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया।

0: करूंगा। और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कोई सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से उसने काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज 3 में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में, कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जैसे डिपिक्ट कहते हैं, कि वो आते हैं वहां पे, माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है
1: जी।
0: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये
1: जी।
0: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज 3 समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है, कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये
1: जी।
0: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज 3 होना चाहिए। मैं, मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे टीम ने मेहनत की, प्रोड्यूसर ने मेहनत की, मेरे राइटरों ने मेहनत की, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज थ्री उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉरपोरेट बनाई 2006 में, कॉरपोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, 2008 में फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी

सामाजिक सरोकारों को देखकर, जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहाँ जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी, इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं,

0: जिक्र ही कर रहे हैं तो ये जिक्र भी जरूरी है, यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम, रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: लीजिए सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है धार जिले की चिट्ठी। आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। धार जिले में इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में अब तक लगभग 4.5 इंच वर्षा कम दर्ज हुई है, जबकि गत वर्ष इस समय तक 500 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई थी। इसके बावजूद इस साल धार जिले में 5,14,665 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी हो चुकी है। इनमें सर्वाधिक 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 1,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास और 84,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की फसलें बोई गई है। शेष क्षेत्र में दलहन और अन्य उद्यानिकी फसलें आच्छादित की गई है। जिले में 2 रेल परियोजनाओं इंदौर दाहोदा और छोटा उदयपुर धार का तेजी से काम चल रहा है। यहां रेल सुरक्षा आयुक्त पश्चिम सर्किल मुंबई ई श्रीनिवास के निरीक्षण के दौरान रेलवे ट्रैक पर 127 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इंजन चलाकर परीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट रेलवे को सौंपी जाएगी। इसके बाद रेल मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद यात्री रेल सेवा शुरू करने की कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पीथमपुर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपए निवेश की 2 अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों इकाइयां उच्च तकनीक आधारित विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं को और मजबूत करेंगी। इन इकाइयों से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में तिरंगा यात्रा निकालकर राष्ट्रप्रेम की अलग जगाई गई है। राष्ट्रप्रेम, एकता और देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत इन तिरंगा यात्राओं में बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लोगों, राजनीतिक दलों व जनप्रतिनिधियों द्वारा आमजनों के साथ सहभागिता की गई। धार और बदनावर में निकाली गई तिरंगा यात्रा में धार महू सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास सावित्री ठाकुर, विधायक नीना वर्मा सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जिले में स्वतंत्रता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह ध्वजारोहण के आयोजन हुए। जिला मुख्यालय स्थित किला मैदान पर आयोजित मुख्य समारोह में कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी ली गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा भी साथ थे। यहां मीसाबंदी, लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिले के राजगढ़ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय जनसंवाद और समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। बदनावर में नगर परिषद द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में इंदौर संभाग आयुक्त भास्कर लक्षकार शामिल हुए। संभाग आयुक्त ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत धार जिले के कुल 340 श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से 7.58 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत कर उनके खातों में पहुंचाई गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला प्रशासन द्वारा धार में पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 217 से अधिक टीमों ने पंजीकरण कराया था। सभी टीमों के प्रथम सत्र में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। द्वितीय सत्र में मल्टीमीडिया क्विज में 6 टीम के 3-3 बच्चों की टीम ने भाग लेकर 10 राउंड में मुकाबला किया। सावन के पवित्र माह में धार जिले में अनेक स्थानों पर कांवड़ निकालकर श्रद्धालुओं द्वारा भगवान शंकर का पूजन अर्चन किया गया। माँ सरस्वती भोशाला की मुक्ति और उनके गौरवपूर्ण पुनर्स्थापना के लिए महाराजा भोज उत्सव समिति द्वारा माँ वाग्देवी मातृशक्ति महिला कावड़ यात्रा निकाली गई। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में धार में जिला स्तरीय सम्मेलन और समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ विधायक नीना वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संत शिरोमणि रविदास महाराज के जीवन दर्शन और मूल्यों पर आधारित विशेष व्याख्यान हुए। रक्षाबंधन पर्व को लेकर जिले भर में उत्साह का माहौल है, बाजार गुलजार है। रक्षाबंधन के पवित्र पर्व को ध्यान में रखते हुए धार डाक विभाग द्वारा बहनों और भाइयों के स्नेह को समय पर पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे धार जिले की चिट्ठी, वाचन दीपा का था। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा। कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे।
1: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।
2: श्रोताओं, अभिनंदन कर रहा हूं आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं मनोज सक्सेना और इस कार्यक्रम में आप तो जानते हैं हम लगातार बात कर रहे हैं भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। सर, आज जो हम विषय लेना चाहते हैं वह भी श्रोताओं के द्वारा दिया हुआ है, यूरिक एसिड को लेकर लोग बड़े परेशान हैं।
3: देखिए, ऐसा होता है कि जब भी आप जांच कराते हो, हेल्थ चेकअप कराते हो, तो 2-3 जांचें आपकी बड़ी आती हैं। उसमें से एक जांच होती है यूरिक एसिड, कभी कभार TSH, कभी कभार शुगर बढ़ा हुआ आता है, और कभी कभार आप विटामिन B12 कम आता है। तो ये प्राय जांचें ऐसी हैं कि जिससे जनता परेशान हो जाती है। तो यूरिक एसिड जो है ये आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का भाग है। बहुत ज़्यादा मात्रा में होने से ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है जब कंसंट्रेशन खून में बढ़ेगा, तो ये जॉइंट्स में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो आपको एक बीमारी होती है गाउट, जहाँ पे आपका पैरों के अंगूठा सूज जाता है प्रायः, उसको हम कहते हैं पोडाग्रा, एकदम लाल कुप्पा हो जाता है। तो ये जो परिस्थिति होती है तो ये अपने आप ही बताती है कि ये तो यूरिक एसिड, देखो भैया ये यूरिक हाइपर यूरिसीमिया है।
2: जी जी।
3: तो गाउट की अवस्था में कभी कभार यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो गुर्दे में स्टोन बन जाता है। डॉक्टर जांच करके पता करता है कि यूरिक एसिड का स्टोन है, या यूरिक एसिड की मात्रा खून में हजारों में हो जाती है, और किडनी फेलियर है, यूरिक एसिड की मात्रा हजारों में हो जाए तो रीनल शटडाउन ना हो। ये 3 मुख्य कारण है जिसके कारण हम यूरिक एसिड का इलाज करते हैं, गाउट हो, यूरिक एसिड के स्टोन्स हो, या यूरिक एसिड हजारों में हो। पर प्रायः ये 2 या 3 पॉइंट बढ़ा हुआ जो यूरिक एसिड रहता है उसका कट ऑफ 4 है, आपका 6 आ रहा है, किसी का 7 आ रहा है, किसी का 8 आ रहा है। तो ये केवल एक ही चीज इंगित करता है कि मेटाबॉलिज्म से संबंधित, चयापचय से संबंधित रोग, मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग, लकवा, ये आपके जीवन में आने वाला है।
2: सर, यूरिक एसिड जब शुरू होता है बनना या अतिरिक्त मात्रा में बनने लगता है तो उसके संकेत हम कैसे जाने?
3: देखिए, उसमें संकेत देखने की आवश्यकता नहीं है, हेल्थ चेकअप के हम सभी शौकीन हैं तो पता तो चल ही जाता है। तो वो एक अनावश्यक जांच है, पर हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो यूरिक एसिड जब 2-3 पॉइंट बढ़ा हुआ है तो दौड़ना चालू कर दीजिए, भागना चालू करिए, एक एक दो दो रोटी के खाने में आइए, वजन नियंत्रित करें, शुगर है तो शुगर नियंत्रित करें, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित करें, हृदय रोग है तो डॉक्टर से मिलकर हृदय रोग का इलाज कराएं। यूरिक एसिड का इलाज कुछ मैंने विशेष परिस्थितियां बताई, उसके अलावा कभी करने की आवश्यकता ही नहीं होती।
2: अच्छा, अगर कोई व्यक्ति नजरअंदाज करता है इस चीज को तो कितने घातक परिणाम हो सकते हैं?
3: देखिए, 2-3 पॉइंट यूरिक एसिड बढ़ने की बात को नजरअंदाज करने से जगह मैं तो कहूंगा कि आपको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। संज्ञान में लेने से फिर क्या होता है कि आप हर प्रकार के जोड़ों के दर्द या किसी को आपके डॉक्टर भी बोलने लगते हैं कि यूरिक एसिड के कारण है, और जांच में भी बढ़ा हुआ आ जाता है, देखो मैंने बताया तो, और दवा लोग खाते रहते हैं। यूरिक एसिड कम करने की दवा से हृदय रोग और हृदय की धड़कन भी ऊपर नीचे होते हुए देखी गई है। तो जिसको जरूरत है वो जरूर ले यूरिक एसिड की दवा। पर प्रायः 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जिनको आवश्यकता ही नहीं है और वो जबरदस्ती यूरिक एसिड कम करने की दवा खा रहे हैं।
2: तो ये परिस्थिति भी नुकसानदेह है ना सर,
3: क्योंकि दवा के बारे में तो आया ही है। जो दवा है वो ये उसने दिखाया है कि वो हृदय की धड़कन बढ़ाती है, हृदय से संबंधित परेशानियां भी बढ़ा सकती है, तो क्यों अनावश्यक दवा लेना?
2: यूरिक एसिड दिखाना है या बढ़ा हुआ आ रहा है तो सही डॉक्टर कौन है?
3: देखिए, यूरिक एसिड का संबंध अगर जोड़ों से संबंधित हो रहा है, आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं और यूरिक एसिड काफी बढ़ा हुआ आ रहा है और आपको पोडाग्रा, जो मैंने बताया ना, जॉइंट एकदम सूज के कुप्पा हो गया है, तब तो आप पहले तो दर्द की दवा देंगे, आराम हो जाने के बाद यूरिक एसिड दोबारा देखेंगे, पहली बार में तो फिर भी दवा नहीं लिखेंगे। लगातार यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है और ये पोडाग्रा हो रहा है, तब तो चालू करना चाहिए इलाज। आज इनको किडनी में स्टोन है और वो यूरिक एसिड वाला स्टोन है तो जरूर इलाज चालू करना चाहिए। या किडनी फेलियर है, ये यूरिक एसिड हजारों में है और आपको लगता है कि किडनी बोल जाएगी, तब जरूर यूरिक एसिड कम करने का इलाज करना चाहिए। बाकी परिस्थितियों में दवा की आवश्यकता नहीं है।
2: मित्रों, हम आपसे इसीलिए बार बार कहते हैं कि जब भी आपको कोई बीमारी हो तो आप उस बीमारी के विशेषज्ञ से जाके मिलिए तो आपको सही, सटीक और पर्याप्त इलाज मिलेगा जिससे आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, इस तरह की बातचीत हम लगातार करते

0: करते रहेंगे। आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हमारा नंबर है 8878112343। नंबर फिर सुन लीजिए 8878112343। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के जाने माने डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। मिलते हैं अगले बुधवार, स्वीकार कीजिए, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने का पुनः प्रसारण।

0: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर और आइए लेते हैं ये पहला कॉल। नमस्कार।
1: नमस्कार, हम बोला सड़ेरी से।
0: नाम बताएं अपना।
1: हम सुनील सैन लोधी बोल रहे हैं।
0: सड़ेरी कहाँ पे है आपका ये गांव?
1: यहाँ है भाई, इधर का पश्चिम को 8 किलोमीटर।
0: अच्छा अच्छा, क्या करते हैं सुनील भाई आप?
1: हम खेती किसानी करते हैं।
0: सुनील भाई, अंगदान के बारे में कुछ जानते हैं आप?
1: ये हम नहीं जानते।
0: भारत सरकार ने जीवन संजीवनी अभियान चलाया है। ये अभियान ऐसा है कि इसमें हमें अपने गांव में लोगों को शहरों में जागरूक करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा अंगदान देने का प्रयास करें। अंगदान कर देने से कई लोगों को फायदा होता है, तो अपने गांव में भी लोगों से कहें कि अंगदान के प्रति जागरूक रहें। जैसे कि नेत्रदान हो जाता है और शरीर के ऊतक दान कर दिए जाते हैं, ऐसी कई चीजें होती हैं जो दान कर दी जाती हैं। तो बताएं, गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
1: मेगा मेगा।

0: हेलो
1: नमस्कार।
0: नमस्कार सर,
1: अपना नाम बताएं।
0: शेर सिंह यादव पटरा, पटरा पठारी के पास।
1: अच्छा अच्छा, क्या करते हैं शेर सिंह जी?
0: किसानी करते हैं सर।
1: तो शेर सिंह, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हमारी सरकार लोगों में जागरूकता फैला रही है कि वो अंगदान करने को प्रेरित हों। अगर व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उसके साथ अंगदान कर देते हैं तो कई दूसरे व्यक्तियों को जीवन दान मिल जाता है।
0: जी जी।
1: आपके आसपास जो भी लोग हैं अंगदान करने को प्रेरित करें, और अगर कोई व्यक्ति अंगदान करता है तो हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए।
0: जी जी सर, सही बात सर।
1: तो बताएं गाना कौन सा सुनवाएं?
0: सावन का महीना पवन करे सूर।
1: आइए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म मिलन का ये गीत।
2: Mm-hmm.

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका।
0: हम निरपत बोल रहे हैं सर।
1: निरपत?
0: ओ
1: कौन से रेंजा से बोल रहे?
0: जो ढाना के पास में है, थोड़ो राहली रोड पे।
1: अच्छा, रेंजा में क्या करते हैं निरपत भाई?
0: मजदूरी करते हैं सर।
1: अच्छा अच्छा, किस प्रकार की मजदूरी करते हैं आप?
0: बस यही किसानी में लग जाती, किसान भाई के।
1: अच्छा, तो आपकी खुद की खेती नहीं है?
0: नहीं है सर।
1: निरपत भाई, हम आपको बताना चाहेंगे कि व्यक्ति जब इस दुनिया से जाता है तो वो उसके पहले अंगदान करने का प्रण कर सकता है, और कहा जाता है कि एक अंगदान कई जीवन दान।
0: हाँ जी सर, आपका कहने का सही है, लेकिन व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम पहले अच्छा कर्म करें तो सबके लिए अच्छा लगे।
1: हाँ, और जाने के बाद कई लोगों को जीवन दान दे सकता है वो।
0: हाँ दे सकता है सर, क्योंकि कम से कम वो तो चले गए, कम से कम अच्छा तो काम कर गए सर।
1: हाँ चलिए, तो आप प्रयास करें अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें इसके प्रति।
0: जी सर।
1: बताएं गाना कौन सा सुनवाएं?
0: गाना सुनना है सर मुस्कान फिल्म को, मैंने जिसको दिल दिया है।
1: आइए सुनते हैं निर्बल भाई, आपकी फरमाइश पर फिल्म मुस्कान का ये गीत।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या कैसे?